आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट

0: जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आम्ही आकाशवाणीच्या बीड केंद्रावरून बोलत आहोत। श्रोता सकाळचे ठीक 6:05 झाले आहेत। प्रसारित होत मंगल प्रभात हा भक्तिगीतांचा कार्यक्रम। कार्यक्रमात श्रोते ऐकूयात सतीश आघाडकर आणि सहकाऱ्यांनी सादर केलेले स्तोत्र।

सकलदिङ्मण्डल यशो वितानधवलीकृत जगत्त्रितय वज्रदेह रुद्रावतार लङ्कापुरिदहन उमा अमलमन्त्र उदधिबन्धन दशशिरः कृतान्तक सीताश्वसन वायुपुत्र अञ्जनी गर्भसम्भूत श्रीराम लक्ष्मणानन्दकर कपि सैन्य प्राकार सुग्रीव साह्यरण पर्वतोत्पाटन कुमार ब्रह्मचारीन् गभीरनाद सर्वपापग्रहवारण सर्वज्वरो

प्राणायो ग्रहमंडल सर्वभूतमंडल सर्व पिशाच मंडलोच्चाटन भूतज्वर एकाहिक ज्वर द्व्याहिक ज्वर त्र्याहिक ज्वर चातुर्थिक ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर माहेश्वर वैष्णव ज्वरान छिंधि छिंधि यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्च

हनुमते श्रवणचक्षुर्भूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वविषहर हर आकाशभुवनं भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय प्रहारय प्रहारय सकलमायां भेदय भेदय ॐ ह्रां ह्रीं ॐ नमो भगवते महाहनुमते सर्वग्रहोच्चाटनपरबलं क्षोभय क्षोभय सकलबन्धनमोक्षणं कुरु कुरु शिरःशूलगुल्मशूल सर्वशूलान् निर्मूलय निर्मूलय नागपाशानन्दवासुकी तक्षककर्कोटककालियान् यक्षकुलजलगतविलगतरात्रिञ्चर दिवाचर सर्वान् निर्विशं कुरु कुरु स्वाहा राजभय

0: भावधारा हा सुगम गीतांचा कार्यक्रम संपला. भावधारा हा सुगम गीतांचा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या बीड केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला. सकाळचे ठीक 8 वाजता सहक्षित करत आहोत समाचार प्रभात. 8:15 मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून आणि त्यानंतर 8:30 मराठीतून राष्ट्रीय बातमीपत्र आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून सुरुवात ऐकूया. ठीक 8 वाजता समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा. तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद. छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद. भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की. सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है. उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है. सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है.
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है.
3: चुनौतियाँ आएगी,
2: चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं. इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है. इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं. प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए. श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं. प्रधानमंत्री के सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है. आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं. नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं.
4: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है. वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है. औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है. वही सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है. इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं. ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है.
5: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें. उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है.
4: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है. अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़.
1: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं. लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है. राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है. उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने कई

0: जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान

0: देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट 12 इयर्स। Heavy rains lashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days.

ज्योति नूरा को आप सुन रहे थे। राजशेखर का लिखा ये गीत था, कृष्णा सोलो की तर्ज थी, फिल्म थी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। श्रोताओ, जानी मानी अभिनेता, लेखक, निर्माता और निर्देशक देवानंद की आज जन्म जयंती है। भारतीय सिनेमा की परिकल्पना शायद देवानंद के बिना नहीं की जा सकती, जिन्होंने फिल्म दुनिया के शुरुआती दौर को एक नई पहचान दी और लगभग 6 दशकों से भी ज्यादा फिल्मों में सक्रिय रहे। उनकी स्क्रीन अपीयरेंस की बात करें, उनकी ड्रेसिंग सेंस की बात करें, स्टाइल की बात करें या फिर उनकी डायलॉग डिलीवरी, आज भी सभी के जहन में ये सब बातें ताज़ा हैं। 6 दशकों से ज़्यादा के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने बेशुमार फिल्में की। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया। 1946 में देवानंद ने प्रभात फिल्म्स की हम एक हैं में मुख्य भूमिका से फिल्मों में शुरुआत की। 1948 की फिल्म जिद्दी बेहद सफल हुई। फिल्म बाजी 1951 में आई और इसी फिल्म ने उन्हें एक व्यापक पहचान भी दिलाई। फिल्म जाल, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट, हम दोनों, सीआईडी, जब प्यार किसी से होता है, प्रेम पुजारी, हीरा पन्ना, गाइड और तमाम फिल्में जिनमें वैजयंतीमाला, साधना, नूतन, नलिनी जयवंत, वहीदा रहमान और कभी मुमताज भी साथ साथ नजर आईं। फिल्म

विद्या, जीत, शायर, अफसर, ये फिल्में अभिनेत्री सुरैया के साथ यादगार रहीं। अभिनेत्री कल्पना कार्तिक उनकी शरीके हयात बनी। दिसंबर 2011 को दिग्गज अभिनेता देवानंद ने इस असार संसार को अलविदा कहा।

0: आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, इस फिल्म का गीत आपने सुना देखा भरद्वाज की आवाज में, संजीव आनंद झा का लिखा और स्वरबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे।
1: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।
3: प्राण प्रिय।

तमाशा फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान का संगीत था। और इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम श्रोताओ यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे संगीता श्रीवास्तव के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो इसी उम्मीद के साथ लेते हैं कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक ऐसे अभिनेता को नमन जिसने पश्चिम के मशहूर अभिनेता ग्रेगरी पैक की शैली को अपनाया, उसमें अपनी थोड़ी सी अदा मिलाई और बनाई अपनी एक सदाबहार अदा।
1: बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है।
0: एक ऐसा हीरो जिसने तकरीबन 4-5 दशक तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया।

धर्मदेव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को शंकरगढ़ गुरदासपुर में हुआ था। आज ये जगह पाकिस्तान का हिस्सा है। पिता पिशोरीलाल आनंद एक जाने माने वकील हुआ करते थे। तीन भाई थे, चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद। चेतन आनंद अपनी पढ़ाई खत्म करके मुंबई आ गए थे और फिल्मों और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़ गए थे। देव आनंद ने अपनी स्कूली पढ़ाई की डलहौजी के सेक्रेड हार्ट स्कूल में। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो धर्मशाला गए और वहां से चले गए लाहौर, जहां उन्होंने इंग्लिश में बीए ऑनर्स किया। 40 के दशक में देव आनंद मुंबई आ

0: मेरी जान।
1: यहाँ उन्हें काम मिला मिलिट्री सेंसर ऑफिस में, इसके बाद एक और छोटी सी नौकरी। लेकिन इस बीच अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्में देखने के बाद उनके मन में महत्वाकांक्षा पैदा हुई फिल्म कलाकार बनने की। एक दिन धड़ल्ले से वो प्रभात स्टूडियोज में घुस गए और काम की मांग की। आखिरकार सन 1946 में प्रभात फिल्म्स की पेशकश हम एक है में उन्हें काम मिल गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई। दोनों दोस्त बन गए, एक दूसरे से वादा किया जब वो कामयाब बन जाएंगे तो एक दूसरे के लिए फिल्में बनाएंगे। आगे चलकर दोनों ने ये वादा पूरा किया। देव आनंद ने अपने करियर के शुरुआती दौर में सुरैया के साथ कई नायिका केंद्रित फिल्में की। देव आनंद और सुरैया 7 फिल्मों में एक साथ नजर आए। सन 1948 विद्या,

0: सन 1949 जीत, सन 1949 में ही आई शायर, 1950 में ही आई नीली और अफसर नाम की फिल्में। सन 1951 में आई सनम और फिर दो सितारे। दो सितारे सुरैया और देवानंद की एक साथ की गई आखिरी फिल्म थी। सन 1949 में देव आनंद ने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स नामक फिल्म कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी की पहली फिल्म थी अफसर। इसके बाद फिल्म बाजी बनाकर उन्होंने गुरुदत्त से किया वादा निभाया। इस फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे।
1: सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले भोर भुले भले सोना ना।
0: कलाकार थे देवानंद, गीता बाली और कल्पना कार्तिक। कल्पना कार्तिक के साथ देवानंद की बेहतरीन जोड़ी जमी। सन 1952 में आई आंधियां, फिर टैक्सी ड्राइवर।

0: और 9211।
1: पहला बादल
2: बादल में क्या थी?
1: किसी का आंचल।
0: जब टैक्सी ड्राइवर हिट हो गई तो देवानंद और कल्पना कार्तिक ने सन 1954 में

खास अदा के लिए देवानंद जाने जाते हैं। कहते हैं कि जिस रास्ते से देवानंद गुजर जाया करते थे, खास तौर पर अपनी ट्रेडमार्क काली पोशाक में, तो लड़कियां उफ उफ कर

दिलचस्प बात यह है कि देव आनंद की फिल्मोग्राफी बेहतरीन गानों और शानदार संगीत की एक सुरीली यात्रा भी है। आइए फिल्म दर फिल्म देव आनंद की फिल्मों के गाने सुने और कुछ संवाद भी। सन 1955 मुनीम जी, निर्देशक सुबोध मुखर्जी,

देव आनंद के छोटे भाई विजय आनंद ने सन 1957 में बनाई 9-2-11 और इस तरह से उन्होंने निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस फिल्म की हीरोइन थी कल्पना कार्तिक।

0: के रूप में चली।
1: इसके बाद विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने कई फिल्मों में काम किया। सन 1960 काला बाजार, खोया

0: सन 1963 विजय आनंद का निर्देशन तेरे घर के सामने।
1: बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आंखों का धुआं, दिल मेरा मेरी जान ना जला, तू कहां।
0: सन 1965 देव आनंद और विजय आनंद की कल्ट फिल्म गाइड।
2: आज मैं कितनी आजादी महसूस कर रहा हूँ, जिस्म जैसे मांगे करना भूल गया, मन तड़पना तड़पाना भूल गया, जीवन आज जैसे मुट्ठी में है, मौत जैसे खेल है। अभी बेजान होकर के पढ़ूंगा तब देखोगे, लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो आज कोई इच्छा ही नहीं रही, कम से कम जीने की इच्छा तो ना झंडू। जिंदगी पिघल का प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है, तन रहे न रहे।

0: ये फिल्म देवानंद की पहली कलर फिल्म थी और आर के नारायण के मशहूर उपन्यास पर आधारित थी।
1: प्यार करने वाले

बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। मैं कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ, कभी गुस्से में बुरा भला क्या जाए करूँ तो बुरा मत लगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है

0: देव आनंद और विजय आनंद की जोड़ी की बेमिसाल फिल्म साल 1967 ज्वेल थीफ।
1: क्या हुआ तुम्हें सारी रात तो तुम मेरे साथ रहे हो? मैं कहीं पी तो नहीं ली तुमने? रात को 9:30 बजे का शो हम दोनों ने साथ देखा, उसके बाद होटल में जाकर सो गए। इसकी बात कर रहे हैं आप? पूना की गाड़ी के बाद आज पहली बार तो आपसे मिला हूँ। पीना है तुम्हें? हुआ क्या है? पूना से कलकत्ता हम लोग साथ आए हैं, होटल में डबल रूम बुक किया, पल भर के लिए भी तो साथ नहीं जो हम दोनों। कितने बजे तक मैं आपके साथ? तुम सो रहे थे बस मैं निकला है। क्यों? साथ आपने दो दिन बताए वो अमर है।
2: अमर
1: अमर उसने फिर धोखा
2: दिया।
1: पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। अपने आप को जितना चालाक समझते हो उतने बेवकूफ।
3: रात अकेली है कुछ कैदी।
0: 1970 में आई जॉनी मेरा नाम, निर्देशक थे विजय आनंद।
4: तुम्हारा क्या नाम?
5: जॉनी।
4: अरे तू इंसान है या हैवान?
5: तो क्या नाम है तुम्हारा?
4: पहले

0: कानों की महल ने फिरवाई है। एक ही बात को बार बार दोहराने का आदि नहीं हूं मैं।
1: एक बार और बता, फिर इसके बाद नहीं पूछेंगे।
2: जॉनी!
0: मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे आपने हमें 10,000 रुपए दिलवाए। अगर मालूम होता कि जिन भूतों से वास्ता पड़ेगा तो आप कभी झूठ से सिद्धांत करके रखो चक्कर हो जाते।
2: हर झगड़ा प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मुरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठ कर सब फैसले कर लिया जाए।
3: इसके बाद 1971 में तेरे मेरे सपने।
4: डॉक्टर जगन, क्या आप यही डॉक्टर जगन्नाथ कोठारी हैं? MBBS बॉम्बे, MRCOG लंदन, मेडिकल रूल्स। इसके साथ तुम क्या करो? इनके साथ मैं काम करता हूँ, उनके बारे में जान लेना पसंद करता हूँ। उनके बारे में जान लेने से बेहतर है डॉक्टर आनंद उनको जान लेना। घबराओ नहीं, बहुत वक्त मिलेगा, जान जाएंगे हम एक दूसरे को।
5: मेरे लिए अभी ये जान लेना बहुत जरूरी है। ठंडे की बदबूदार बोतल देखता हूँ तो MRCOG लंदन समझ में नहीं आता।
4: आनंद, मैं इसे बिल्कुल जरूरी नहीं समझता कि ये तुम्हारी समझ में है। MRCOG सिर्फ 5 अक्षर हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और ये ठर्रे की बोतल एक हकीकत है मेरे लिए, समझे?
3: और सन 1973 में विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने की छुपा रुस्तम।

बात चल रही है देव आनंद की कुछ बेमिसाल फिल्मों की। सन 1958 में आई राज खोसला के निर्देशन वाली 16वां साल, हीरोइन थी वहीदा रहमान।

0: नासिर हुसैन के निर्देशन वाली सन 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है, हीरोइन आशा पारेख।
1: जब प्यार किसी से होता है तो दर्द का दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है।
0: युग बदलते चले गए, हीरोइने बदलती चली गईं, लेकिन देव आनंद की शोखी, उनकी चंचलता और बॉक्स ऑफिस पर उनका जादू कायम रहा। सन 1961 में आई वॉर फिल्म हम दोनों, निर्देशक अमरजीत, हीरोइने नंदा और साधना।
2: अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
0: सन 1962 में आई शंकर मुखर्जी की फिल्म बात एक रात की, हीरोइन थी वहीदा रहमान।

0: अमरजीत ने सन 1965 में देवानंद और तीन हीरोइनों के साथ एक नायाब फिल्म बनाई तीन देवियां। ये हीरोइनें थीं सिमी गरेवाल, नंदा और कल्पना मोहन।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है। समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ।

0: सन 1970 में देव आनंद ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बनाई प्रेम पुजारी।
1: रंग में पिघले सोना अंग से यूं रख छलके जैसे बजे धुन सोई रात में हलके।
0: ये फिल्म फ्लॉप हो गई लेकिन निर्देशन का देव आनंद का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा बनाई साल 1971 में।

आनंद आखिरी दम तक अपनी फिल्मों का निर्देशन करते रहे। साल 2002 में देव आनंद को फिल्म संसार में अपने अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी ऊर्जा और जिंदगी के लिए उनका फलसफा नायाब था।

सदैव आनंद, अपनी असीमित ऊर्जा, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने सदाबहार फिल्मी जीवन के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था देव आनंद पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: आकाशवाणी बीड केंद्र सकाळचे ठीक 10 वाजले आहेत। श्रोतो प्रसारित होत श्रोत्यांच्या मनपसंत मराठी गीतांचा फोन इन कार्यक्रम अर्थात हॅलो गीतमाला। आजच्या हॅलो गीतमाला या कार्यक्रमात श्रोत्यांशी संवाद साधला आहे वैशाली राऊत यांनी, तर सादरकर्ते आहेत योगीराज बच्चे। ऐकूयात हॅलो गीतमाला हा कार्यक्रम।

0: वनिता मंडळ हा कार्यक्रम आपण ऐकत होतात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर. मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर. तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात.
0: ठीक 1 वाजता दिल्ली केंद्रावरून हिंदी समाचार प्रसारित केले जातील.

संगीत के इस सुरीले सफर में बन के हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता देंगे हम आज की इबारत क्या है। साथियों, देखते ही तुझे कह उठा दिल, मिल गई है मुझे मेरी मंजिल, तुम मुझसे जुदा हो जाओगे बोलो कैसे रह पाओगे। हसीन झरनों के साई में अकेला छोड़ जाते हो न जाओ, तुम्हारे बिना बहारों में खुशी क्या है। ठहरो मैं दिल को संभालू जरा, अभी तो आए हो अब जाते हो क्यों, क्या मेरी चाहत पे तुमको नहीं भरोसा।

जाके फिर आओगे, आके फिर जाओगे, छोड़ो ये आना जाना कि बीच राह में बिछड़ जाएं कहीं हम, अगर तो आओ पास बैठें कि कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं और कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले ये कहानी सारे जहान से। तो सुरीला सफ़र के हमारे बहुत सारे साथी हम सफ़र हमें बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं, मतलब हम तक भेज चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं। तो इन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफ़र में बन के हम सफ़र आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम पढ़ देते हैं आपके कुछ संदेश। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुकम्मल मोहब्बत में खोए महबूब और महबूबा की दीवानगी, मदहोशी का माकूल चित्रण, मोहब्बत के मारों की रुमानी दास्तां, जहां किसी गैर की ज़रूरत नहीं होती, उनकी मंजिल है मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत प्यार में मिलन की दास्तान और साथ बिताने वाले सुनहरे पल को लेकर आई है, जो मोहब्बत में अपने भरोसे को कायम रखता है। नजरों से नजरों का मिलना कुछ इस तरह हुआ, हर नज़ारा एक हंसी ख्वाब जैसा हुआ, जब हम मिले तो सज गया समा, प्यासे दिल की जमी को मिला आसमां। अगला कमेंट है कि आज की सुंदर इबारत प्रेम की उस कहानी को सुर देती है, जिसमें मिलन की खुशी, बिछड़ने की कसक और साथ बिताए पलों की सुहानी यादें एक साथ धड़कती हैं। उसमें कहीं भरोसे की मिठास है, कहीं जुदाई का डर, तो कहीं फिर लौट आने की उम्मीद। अगला एक साथी ने अलग मैसेज लिखा है कि दो दिलों की दास्ता है इस कहानी में, मिलने की खुशी है, बिछड़ने का गम है और वो हमेशा साथ रहे। आज के गीत आने की आशा और बिछड़ने के दर्द से भरे हैं और अपने प्रियतम को पास रोक लेने की कोशिश करते नजर आते हैं। आज की इबारत में मिलन की खुशी भी है और जुदाई का गम भी, तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, और जब मिले तब देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, अच्छा तो हम चलते हैं, चले जाना जरा ठहरो। मोहब्बत में कभी मंजिल मिलती है तो कभी जुदाई का डर सताता है, उसके बिना बहारों की खुशी भी अधूरी लगती है और दिल चाहता है कि वो कुछ पल और ठहर जाए। चाहत और भरोसे के सहारे प्यार के तूफानों को पार करते हुए मन कभी साहिल की तलाश करता है। आना जाना और बिछड़ना जीवन का हिस्सा है, मगर साथ बिताए पल हमेशा दिल में रहते हैं। पास बैठ कर बीती रातों की कहानी सुनते सुनते कब दिन ढल जाता है पता ही नहीं चलता। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में जो ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, इन कलाकारों के नाम लिख दीजिए और इस अभिनेता का देव आनंद के साथ क्या रिश्ता है वो भी हमें बता दें। इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की, संगीत है बप्पी लहरी का, गीतकार है अमित खन्ना और फिल्म का नाम है चलते चलते, और साथ ही अपने विचार, अपने जवाब हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे वो हमें मिल गए। विशाल आनंद अभिनेता, निर्माता, निर्देशक देव आनंद के भतीजे हैं और विशाल

आनंद ने इस फिल्म में अभिनय किया था। और साथियों जो मैसेज मिला है ये है कि इस फिल्म की खास बात यह है कि इसी फिल्म से मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी को बड़ा ब्रेक मिला था। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे रवि गुप्ता और आशा, यानी कि विशाल, आनंद, सिमी ग्रेवाल, नाजनीन और डॉक्टर श्रीराम लागू। साथियों बिछड़ के फिर मिलेंगे, यकीन कितना है, महज ख्याल है मगर हसीन कितना है। जिंदगी का सफर मुलाकातों और जुदाई का एक ऐसा सिलसिला है, हर मिलन के बाद बिछड़ना पड़ता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद का दिया जलता रहता है कि हम बिछड़कर फिर मिलेंगे। ये एक ऐसा एहसास है जो उम्मीद और रिश्तों की गहराई को बयां करता है। मिलन की आस बिछड़ने के दर्द को कम करके दिल में नई आशाएं जगाती है। वक्त के साथ दूरियां कम होती जाती हैं और दोबारा मिलने के रास्ते बनते हैं। सच्चे रिश्ते फासलों से कम नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। बिछड़ना अंत नहीं बल्कि एक नए और खूबसूरत मिलन की शुरुआत का इंतजार है। साथियों जब कोई आपसे मिलकर या मुलाकात के बाद जाने लगता है तो आप उन्हें कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बताएं हमें भी। और किताबी भाषा की जगह थोड़े आसान भाषा में अपने जवाब लिखें। दोस्तों स्कूल कॉलेज के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले मिलकर बिछड़ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग दोबारा मिल भी जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि अचानक ऐसे लोग सामने आ खड़े हुए या किसी डगर पे दोबारा मुलाकात हो गई तो आपको कैसा लगा? उस खुशी को हमारे साथ बांटिए और साथ में ये भी बताइए कि मुलाकात के बाद यानी कि टाटा बाय बाय सायोनारा जैसे कौन से गीत आपके जहन में और मन में इस वक्त आ रहे हैं, हमें वो भी बताएं। और अब बात होगी 1970 में आई फिल्म आन मिलो सजना की, एक मशहूर बॉलीवुड संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसकी कहानी प्यार, धोखे और रिश्तों के उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द घूमती है। कई नाटकीय मोड़ आते हैं जहां अजीत और वर्षा के प्यार की परीक्षा होती है और अंत में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये अजीत, वर्षा, अनिल और सावित्री की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। तब तक आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, अरुणा ईरानी, निरूपा रॉय, सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद। हमारे साथियों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और जवाब लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी किसी का मिलना ही हमारी मंजिल बन जाता है और फिर उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। चाहत बस इतनी होती है कि वो थोड़ा और ठहरे, क्योंकि कुछ साथ पल भर के नहीं होते, उम्र भर के लिए अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आपने टॉपिक को बिल्कुल सही पकड़ा है। कुछ रिश्तों में भरोसा इतना गहरा होता है कि जुदाई का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है साथ यूं ही बना रहे और ये सुहाने पल कभी जल्दी ना ढलें। मोहब्बत शायद यही है, किसी के आने से दिल को मंजिल मिल जाए और उसके जाने का ख्याल आते ही दिल कहे ठहरो, अभी तो कुछ पल और साथ रहो। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत में हमें भरोसा भी नजर आया तो दिल ने कहा, भरोसा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, उसे बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक छोटी सी ठेस भी इसे हिला सकती है। भरोसा वो है जहां शब्द कम पड़ जाएं, फिर भी दिल कहे तुम हो तो सब ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अर्पण का गीत, परदेस जाके परदेसिया, भूल ना जाना पिया, इसका इंतजार है। जब मिले हम तो थमी सी रह गई ये जिंदगी, तेरी आंखों ने कहा मैं हूं यहीं पर कहीं, फासले जितने भी हो अब इस जमाने के दरमियां, तेरी धड़कन में धड़कता रहूंगा मैं हर घड़ी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जहां एक

इस हसीन मौसम की हर बूंद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अभी तो धड़कनों ने संभलना सीखा है। अभी से मुख मोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, बस इस बात का डर है कि ये वक्त कहीं हमें जुदा ना कर दे। आओ कुछ पल और पास बैठो, ताकि इन ढलती हुई रातों में हम अपनी अधूरी दास्तां को पूरा कर सके। बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिछड़ गए तो फिर मिलेंगे हम दोनों एक बार, या इस बस्ती में या इसकी हदों के पार। साथियों, हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है। दुनिया की इस भाग दौड़ में या हालात की वजह से रिश्ते, नाते, मोहब्बतें, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाते हैं। कहते हैं कि दिल की लगन हो सच्ची तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और मिलकर बिछड़े हुए दोबारा मिलते हैं। रिश्ते और मोहब्बतें वक्त और फासलों से ज़्यादा असर रखती हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। सदाबहार मेलोड्रामा फिल्म आया सावन झूम के जय शंकर और आरती की कहानी, अनजाने में जय की गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर और मौत, जो कि आरती के पिता थे। इस भयानक हादसे के बाद एक गहरा अपराध बोध, उसके बाद कहानी में गलत फहमियाँ, उतार चढ़ाव, सच्चाई का सामने आना और एक समाधान पर कहानी ख़त्म। तो बताइए कि ये जय आरती कौन थे, और आया सावन झूम के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी हमारे FB पेज पर लिख दें। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के। और आपके जवाबों का हमें है इंतज़ार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। सुधीर और विजय यानी के संजीव कुमार, महेश कोठारे, निरूपा रॉय, अजीत कमल कपूर और कुमकुम, इस फिल्म के निर्देशक थे कोलजी प्रत्यगात्मा और निर्माता थे एलवी प्रसाद। गीत में साथियों आवाज़ आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम था राजा और रंक। आवाज़ की दुनिया के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफ़र, तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं। ये शुभ मंगल यात्रा का धार्मिक प्रावधान है।

एक साथी ने लिखा है कि मेरा प्यारा पालतू लैब्राडोर बीटल नाम था उसका, 2 दिन पहले वो गुजर गया हमेशा के लिए मुझसे। उन्होंने लिखा है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है। एक साथी ने लिखा है कि फूल खिले हैं तो झड़ेंगे ही, बादल हैं तो खिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही, और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं शम्सुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वी राज कपूर, बिस्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इससे जुड़ा गुजराती भजन है, एकला जा आव्या मनवा, एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला, परिवार बना, उसी से बना ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती जैसा साथी साथ हो तब जीवन का सफर सुरीला मधुर बन जाता है। ये अगला कमेंट है कि अक्सर देखा गया है कि प्यार में कई प्रेमियों के दिल टूट जाते हैं पर उन्हें जीवन में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड, जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी जिसमें सफर के दौरान रोमांस, कॉमेडी और विदेशी नज़ारों की यात्रा को दिखाया गया है। आखिर में सब साजिशें बेनकाब होती हैं और कहानी का सुखान तो होता है। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर की नायिका कौन थी, जिनके माता पिता भी महान कलाकार हैं और साथ में इस फिल्म के खलनायक का भी नाम लिख दे। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं इसमें किसकी आवाज़ें हैं वो भी हमें बताएं और साथ में इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लिख दें।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। राज कपूर, राजश्री, प्राण, ओम प्रकाश, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अमिता, असला, अचला, सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड और अभिनेत्री राज

श्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माताजी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफ़र के बन के हम सफ़र, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

मित्रों, जीवन में कई मोड़ आते हैं। खुशियों में हम खुश होते हैं, दर्द में हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कभी तो ये राहें आसान लगती हैं, लेकिन कभी कभी ये राहें इतनी कठिन हो जाती हैं कि हम अपना धैर्य खो देते हैं। कठिन समय शायद हमारी परीक्षाओं का समय होता है, जिनमें कभी तो हम धैर्य रखते हैं और कभी टूट भी जाते हैं। जिंदगी के ताने बाने में धैर्य या सहनशीलता को धारण करना आत्म संयम को बढ़ाता है। धैर्य मुश्किल हालात में हमारे लिए किसी ढाल की तरह होता है और हम मुश्किल वक्त से पार पाने में समर्थ हो जाते हैं। जिंदगी फिर किसी प्यार के नगमे की तरह लगने लगती है।

स्वभाववश हम विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कभी अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस करते हैं कि लगता है जिंदगी यहीं थम गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसमान के पंछियों की उड़ान जो नाजुक पंखों के भरोसे ही तय होती है, उन नदियों की धाराओं को देखिए जो रास्ते के पत्थरों को भी पार कर आगे निकल जाती है, वो माली जो फूलों और फलों के आने का इंतजार बड़ी धैर्यता पूर्वक करता है, चातक पक्षी स्वाति की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है, धरती धैर्य धारण कर अच्छे ऋतु चक्र में फसलों से लहलहा जाती है, तो क्यों ना हम अपने मन को इन पलों में धीर धरना सिखाएं।

समय एक सा नहीं होता, बदलता रहता है। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह होती है। एक नया सवेरा जागता है, उम्मीद की नई किरणें हमारे जीवन को ऊर्जा से भर देती हैं। हौसला जो हमने अपने दिल को बंधाया था, इस मुश्किल वक्त में संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा एक तरह से हमें दे जाता है। मुश्किल वक्त में न सिर्फ हम धैर्य रखें बल्कि औरों को भी धैर्य बंधाएं। मुश्किल घड़ियां जरूर गुजर जाएंगी और ये पल खुशियों में बदल जाएंगे।

0: आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक
1: अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमरीका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर हॉर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमरीका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता

0: आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों

0: श्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
4: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में

0: प्रशासन हाई अलर्ट पर है, सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
1: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
1: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में 4th स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुम कल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहा सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है पतीता।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज है हेमंत कुमार की, फिल्म का नाम है सोलवा।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।

0: चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
1: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बात एक रात की।
4: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.

0: एक विलक्षण गायक,
1: अरे ओरे हे,
0: संगीत के साधक,
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि

0: जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत हेमंत कुमार की आवाज में, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जाल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
4: जरा नजरों से कह दो।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, गराम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नौसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वत देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आप सभी दोस्तों की पसंद पर। पत्र लिखे हैं आपने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदाराज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

साथियों, आपको बता दें आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भिसे और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। ला हौल वला।
2: नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: हला, मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं, आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार, ये मैं मर गई। अल्लाह।
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबके? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी,
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्चे छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से, बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नया बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से
2: सरकार।
1: अब जाती है के?
2: मुझे ना निकालिए सरकार।
1: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरे अच्छे सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
2: छोटे सरकार, अपनी लॉन्ड्रियों को यूं न धुतकारिए।
1: ओहो, कैसी बातें कर रही है हलीमा।
2: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, कहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
2: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी। किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
2: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब?
2: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रहे हैं।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
2: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं, ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
2: उनके हुक्म से तो नया बुबू ने मुझे भेजा है।
1: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
2: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
1: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
2: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बुबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
1: सरवरी को? ला हौला वला कुव्वत।
2: हाँ सरकार, बुबू मुझसे खफा नहीं, क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
1: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
2: नया बुबू ने बड़े नवाब से

0: मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
1: नहीं नहीं हलीमा छोड़ो।
0: मेरे नवाब।
1: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
0: छोटे सरकार।
1: तुम मुझे गुनाह के घर में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
0: या अल्लाह।
2: अरे भाई जहांगीर साहब और छमन मियां, अरे भाई क्या हाल चाल है?
1: आपकी दुआ है अफजल भाई।
2: अम्मा यार क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
1: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है, कहिए क्या काम है?
2: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अम्मा अम्मा ये क्या किस्सा है?
1: कौन सा किस्सा?
2: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
1: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
2: वजह?
1: मैं इसे बदकारी समझता
2: हूँ। ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
1: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
2: अम्मा घास खा गए हो, क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
1: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
2: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागल खाने पहुँचा दिए जाओगे।
1: ये घर कुछ पागल खाने से कम है? जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे हैं।
2: मैं हकीम साहब किबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
1: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
2: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
1: आप तशरीफ ले जाइए।
2: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
1: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
2: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छमन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं, बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलादे नरीना ना पैदा हुई।
1: औलादे नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
2: मगर बांदी से क्यों भी देखते हो, शादी वक्त आएगा हो जाएगी।
1: और बांदी?
2: बांदी काम आएगी।
1: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगे।
2: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म रिवाज को नहीं समझती हैं।
1: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना हो?
2: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
1: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
2: अम्मा अजीब हवनक आदमी हो।
1: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा, अगर मैं बांधी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
2: ला हौल वला कुव्वत, मियां तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
1: जब अब्बा हुजूर तवायफों के यहां जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती हो।
2: ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
1: जब्बार, अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है, मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूँ मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है, अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
2: तो एक काम करो साहबजादे।
1: क्या?
2: जाते जाते मैं मिनहारन बी को भेजे देता हूँ, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
1: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायब बुबू?
0: मुझे नायब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
1: हलीमा,
0: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती
1: है। नहीं हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई, हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
0: मेरे अच्छे नवाब।
1: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा हम इंसान हैं फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो, तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा, रहम करो हलीमा।
0: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ, कल कैसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
1: हलीमा मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
0: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
1: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
0: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज़ भी मुझसे नहीं निकालिएगा, याद नहीं

0: कस्तूर है, वो गाय भैंस नहीं, वो
1: कहो कहो शर्मा क्यों गए?
0: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
2: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो, ला हौल वला कुव्वत।
1: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता, प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
0: भाई जान,
1: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
0: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
2: बहुत खूब, वो कब?
0: मैंने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
2: और निकाह काजी कौन था?
0: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
1: वल्ला तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
2: जाओ मियां, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? हाँ भाई अफजल भाई, भाई दूसरी बाजी जमाए, ला हौल वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनूबर के साथ।
1: चमन मियां, तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
2: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहां से।
0: भाई जान मैं
2: बदतमीज।
1: अरे, अरे अरे ये क्या करते हो हशमत मियां? क्या
2: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसे हुई?
1: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
3: बेगम साहिबा एक बात कहूं?
4: कह भी चुको क्या कह रही हो?
3: नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है,
4: उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी?
3: अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए। फरागत पाकर विलायत जाने के इरादा है?
4: हाँ हाँ, खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
3: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संतु न ले जाएंगी?
4: अब दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी? खैर से वो मेरे पास ही रहेगा, और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी। अय है दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारो पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई?
3: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं, मुंह जली की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं?
4: ए बुआ तो कुछ मुंह से फूटो तो।
3: नजम बिटिया और हलीमा का बस दो चार दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
4: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
3: जो हुक्म सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी, यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
4: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी,
3: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ साहबजादे भी जिद के पूरे हैं, बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
4: कभी सोचती हूँ नायाब तुम न होती तो।
3: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
4: जरी खासदान आगे बढ़ाओ।
3: लीजिए हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती है।
4: अच्छा दिखा लाओ।
3: अभी मतन तुम्हारी बेगम कहाँ है? जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
5: ओहो नायाब बुबू, कहिए महल में सब कैसे हैं? अच्छे तो हैं?
3: जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया,
5: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
3: लॉन्ड्री तो आपके पास हाजिर हुई थी।
5: क्या है?
3: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
5: क्यों?
3: रानी बिटिया, नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई ऑर्डर जाएगा।
5: मैं क्यों पसंद फरमाऊं?
3: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
5: कौन छोटे सरकार? छम्मन मियां?
3: जी जी हाँ।
5: ओहो, हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
3: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजाक, ये देखिए ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा ये, हाँ लाकेट।
5: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छम्मन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीवी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत
3: है? है। रानी बिटिया क्या फरमा रही है आप?
5: क्यों, क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
3: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधी है।
5: बच्चा तो छम्मन मियां का है ना?
3: बच्चा? कैसा बच्चा?
5: फरखुंदा खाला कह रही थी कि
3: ए बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांधियां इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती हैं।
5: बोलो बोलो, जब्बार की कसम खाकर कह दो।
3: ए बिटिया आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाबजादे हैं, मगर वो लौंडी बांधी तो जी का बेलावा होती है, इन कमबख्तों

0: शादी ब्याह नहीं होता।
1: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से।
0: और क्या बिटिया रानी,
1: हशमत भाई की तो एक बांदी थी, क्या नाम था, सनोबर।
0: ये रानी बिटिया, ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए।
1: एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बबू?
0: शौक से पूछिए, मगर वो
1: नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम।
0: हाय हाय बिटिया रानी, जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रहे हैं?
1: क्यों, अगर छम्मन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो।
0: अम्मा जान नहीं, इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रहे हैं। वो होती तो मजा न थी जो यूं मेरे मुंह पर जुतियां मारती। बेटी जान, ये गज भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी?
1: खुदा ना करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं। मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
0: बस बीवी, बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
1: आय हाय बुबू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
0: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरी सात पुश्तों को कहा।
2: ओहो, नायाब आई है, चली कहाँ? क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे है?
0: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं। खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बम्बई से बनकर आएंगे।
2: नायाब बुबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है? समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
0: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
2: ऐ है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
0: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चे वाली होकर, तौबा मेरी तौबा। बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
2: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया। जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
0: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती हैं, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती हैं बेगम। नौच, यो कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या अर्ज करूं बेगम से जाके?
2: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
3: अम्मा, हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिठाई से इकरार, एक तो मोरी में मुंह देते हो और।
4: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
3: मियां तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
4: दोस्त भाई, आप नहीं समझते।
3: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे,
4: हलीमा मर जाए।
3: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे, वल्लाह क्या पटाखा है।
4: कमीने पाजी,
3: छमन होश में आओ, क्या पागल हो गए?
4: हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा, चले जाइए यहाँ से। हलीमा, हलीमा
1: जी। सरकार।
4: कौन, सरवरी
1: जी?
4: तुम यहाँ क्या कर रही है?
1: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है, कुर्ते में लगा दूँ?
4: चल भाग यहाँ से और हलीमा को भेज।
1: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हमाम में पानी तैयार है।
4: हलीमा कहाँ है?
1: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हमाम में लगा दिया है।
4: ओहो, हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
1: अल्लाह, हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
4: जा बुला ला। जाती है कि माँ खाएगी, चल भाग।
1: हम नहीं जाते।
4: कहाँ है हलीमा बता।
1: उई अल्लाह, मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
4: बता, नहीं बताएगी?
1: बताती हूँ।
4: बोल।
1: वो उधर शागिर्द पेशे में।
4: क्यों?
1: वो उसका जी अच्छा नहीं है। मियाँ खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
4: फरखुंदा बाजी।
1: अरे छमन मियाँ, क्या पैदल भागे चले आप?
4: नहीं, साइकिल पर। फरखुंदा बाजी, वो मर रही है।
1: अरे कौन?
4: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोले भको मत।
1: ठहरो,
4: वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
1: नहीं मियाँ, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं।
0: बुबू, नया बुबू, अस्पताल की लारी आई है। अस्पताल की लारी? दीवानी हुई है ना मुराद,
1: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
0: ये क्या किस्सा है नायाब?
1: लारी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियां भी हैं।
0: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत।
1: लीजिए, वो आ गई। तस्लीम मानी जान।
0: जियो।

0: ये मैं अस्पताल की लारी क्यों आई है?
1: हलीमा को लेने।
0: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब।
1: इस वक्त बहस न कीजिए, पहलोठी का बच्चा है। अगर
0: तुम्हारी बला से तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
1: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा?
0: हद से न बढ़ो फरखुंदा।
1: मुझे मजबूर न कीजिए मुमानी जान।
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
2: पुलिस? या अल्लाह,
0: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
1: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
3: नहीं, मैं उठा लूंगा।
1: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
2: ये आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
3: चुप रहो बेवकूफ।
1: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो,
3: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है।
4: ये क्या हो रहा है?
1: आदाब मामू जान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
4: हमसे पूछे बगैर?
3: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
4: मर जाने दो।
3: अब्बा हुजूर,
4: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
3: नहीं,
4: तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे गुस्ताखी कर रहे हो बेशर्म?
3: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
4: क्या बकते हो मर्दूद? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
3: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
4: तुम्हारे इतने दिमाग?
2: होश में आओ बेटे, मैं मुझे डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
3: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
2: अरे कहाँ जा रहा है छमन मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
3: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
2: ना जाओ मेरे लाल।
3: खुदा,
2: ना जाओ मेरे लाल। छमन,
4: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे।
2: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं उसे जानती हूँ, ना मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
5: नहीं बबू, कैसे छमन मियां के साहबजादे, कैसे बताओ ना।
6: अरे मेरे कान नखा, मुई छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
5: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है?
6: अरे बेगम, बस चांद का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत है।
5: घर बार कैसा है?
6: अरे बेगम कुर्बान जाऊं, ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है। बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी के उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छमन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
5: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
7: नाट्य तरंग में अभी आप इसमत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हेमांगनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
8: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
9: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली पहली।
8: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
10: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
8: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, इतने बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी।
1: हाँ हाँ।
0: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
1: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ
0: जी,
1: मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था
0: जी, बिल्कुल।
1: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब, तो ये है वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया करते थे, जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
0: अच्छा।
1: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी
0: जी,
1: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया तो।
0: अच्छा।
1: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं, तो बोले गाओगी कहाँ। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ ता ता ता

0: कोशिश फिल्म का गाना था, हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा, देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना
1: जी,
0: था।
1: जी.
0: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया। अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले ए जागीरदार, सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
1: बिल्कुल.
0: तो मौसिन को पूछा, अब सीखती है? मौसिन ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। इतना भी काफी था
1: हाँ,
0: उनके लिए, इतना कहना ही
1: बहुत
0: काफी था।
1: बड़ी बात.
0: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम है,
1: कम है. जी
0: है ना।
1: जी जी
0: उनके साथ तो ये था मेरा, नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने, कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे
1: सीखा.
0: तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी,
1: जी.
0: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीज़ें सुनाना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
1: जी.
0: तो हम गए, और वो भी टेनिस खेलने गए थे, वो
1: अच्छा.
0: दिलीप साहब के साथ खेलते थे
1: हाँ हाँ
0: टेनिस।
1: हाँ
0: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने, उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खां साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, बोले इस बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई,
1: जी.
0: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और, करते करते 10 बज गए,
1: रात की.
0: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले,
1: जी.
0: मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफ़ी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइन्स हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगी?
1: अरे
0: तो
1: जी.
0: अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आईना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाहर पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी,
1: अरे
0: इतना ही था
1: वाह
0: बस।
1: जी.
0: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत, उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट,
1: जी जी
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे। तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
1: आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं.

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई। तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है, ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना

0: लता जी गाने वाली थी, ठीक है। और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने? बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
1: जी जी जी जी।
0: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
1: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
0: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बुलप, पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं, चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, बातें करते रहते हैं। वही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तुम मेरा तुम, उस पे बात पे आ गई। पर वही
1: जी,
0: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
1: जी बिल्कुल,
0: वो था बस।
1: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
0: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आरडी बर्मन
1: जी,
0: मेरे पंचमदा
1: जी।
0: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ।
1: जी,
0: तो
1: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
0: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
1: बॉन्डिंग
0: बहुत
1: थी।
0: बहुत हाँ। बहुत अलग।
1: तो क्यों ना पंचम दा का ये गीत सुन लिया जाए जिसमें आपने अपनी आवाज
0: दी। तेरा मुझसे है पहले का नाता
1: कोई। थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
0: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले।

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो वो बच्चा अपने
1: वो पिता मुझे पंचमदा ने सिखाया, पता है उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी,
1: शर्मिला जी कैसे बोलती हैं, मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोले यही चाहिए मुझे। हाँ आगे क्या है डैडी, मैं तो भूल ही गया, मुझे वो चाहिए। बहुत यादें आपने ताजा की आज
0: जी, जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी, कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना तो वो उस वक्त वो एक ऐसा मायाजाल फेर देता है, फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
0: जी,
1: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी,
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी,
0: अच्छा
1: जी, मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं, तो

0: वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
1: जी
0: कोई भी गाना अच्छा, पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
1: अरे
0: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा, एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे। दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे,
1: अच्छा,
0: और फिर ओवर टाइम। तो वहीं सोए थे वो, उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो।

0: तो वहीं सोए थे वो, उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला, सुनो लास्ट अंतराल लिखो और देखो लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
1: जी,
0: बहुत ज्यादा
1: जी।
0: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
1: वो गाएगी,
0: हाँ बोले गाएगी गाएगी पंचम, वो गाएगी गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी,
1: जी
0: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आवाज़, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो इसकी आवाज़ जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल सूट
1: करती है,
0: इस करके ये गाना
1: क्या
0: मुझे मिला।
1: तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, बताइए तेरा मुझसे है पहले का नाता,
0: बिल्कुल
1: आप ही का गाया हुआ सुन
0: जी।

0: ये था मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी, जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता
1: कोई।
0: कोविड के वक्त
1: कितने
0: लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना है।
1: बात है,
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं लोगों ने, किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको

0: वाला है, उसी को बुलाना तू आ जा।
1: ये जो वो बोलते थे ना मंदाकिनी, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही
2: हूं। जी जी
1: देखिए, मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ एक खुले गले का, फिर
0: कहा ना भुलाना तो ये रा रा रा,
1: और सॉफ्ट
0: उसी को भुलाना तो आजा आजा।
2: क्या बात है, क्या तो बात है,
1: ये मैंने
2: ये आधार का जी, ये पंचम धाम में ही ये गुण
1: ये उतार चढ़ाव डायनामिक समझे से कहते हैं। कहां कितना आपको जोर देना
2: है,
1: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
2: वाह,
1: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
2: वाह,
1: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते।
2: जी जी जी, मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला,
1: बहुत,
2: उस छत्र छाया में आपने
1: बिल्कुल
2: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
1: जो ये मेरा भाग्य ही
2: नसीब नहीं मिलता है, अच्छे अच्छों को नहीं मिला
1: नहीं
2: है। अभी भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है जिनको हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले सके सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: तो इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी, उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म, एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ
0: है ना,
1: हाँ जी
0: बांग्लादेश वॉर के
1: जी
0: ऊपर वो
1: जी
0: था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: बारात, वाह।
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ, एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: है। तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और
1: जी
0: मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी। तो वो
1: बिल्कुल,
0: गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी
0: कोल्हापुरी।
1: ने जी।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहाँ प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स, मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा, वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहाँ एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट, मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा,
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी,
1: ने।
0: कि मैं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर अब
1: अरे
0: सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: नहीं। मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूँ और मैं लता जी के साथ गा रही हूँ,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात
0: मेरे लिए काफी।
1: जी।
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा फिर। ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है, आप
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूँ ना, फेड इन फेड आउट पुश बैक पुश बैक, वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचम दास से सीखी। ना ना रा रा रा रा रा रा रा, आप समझे,
1: वो खुद भी ऐसे ही गा देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात
1: धर्म
0: चंद्रा की फिल्म
1: धर्म कर्म भी था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल मुकेश शंकर के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा जिसमें आपने पुष्पा पागधरे के साथ गीत गाया है। तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे, फिर मैं गाती थी एक तू ना, ये मेरा चॉइस रहा है। सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हम माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
0: जी,
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है,
0: विधा है।
1: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है। लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए, राज साहब प्लीज आप तो आप ही की फिल्म है, एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है क्या गाती है, कर दो ना, अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया। तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए, तरम पम।

0: उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
1: जी
0: ए मुकेश चंद वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरमपम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
1: अरे
0: पर उनके उनका बड़प्पन देखिए। हाँ, हाँ। ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ।
1: हाँ।
0: मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी
1: जी,
0: नन्हा शिकारी।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो बापीदा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी। लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे। हाँ, इवन हाँ, रिकॉर्डिंग्स में हाँ, वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही हैं आप।
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए
1: क्या बात है।
0: वहां मैंने ये एक और मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
1: ये नम्रता भी,
0: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
1: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए,
0: और वही बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरमपम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
1: अरे
0: राज बच्चा तरमपम बोलेगा और मैं बोलूं उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो क्या, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरमपम तरमपम, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
1: क्या
0: नहीं तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस,
1: बिल्कुल
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल इसको इसको स्वीकार कर लेना,
0: ये ईमानदारी
1: जी
0: है ना
1: जी,
0: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी। वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
1: जी,
0: क्यों मैं समझती हूँ हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का
0: वो जो अंतरा है कि ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे

0: एक दिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा
1: माटी
0: माटी के
1: के
0: मोल, ये
1: मोल।
0: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये
1: बिल्कुल
0: गाना
1: बिल्कुल, ये
0: बजाइए।
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद अंतिम गाना था,
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत।
0: जी जी,
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर की मम्मी
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी। मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब, कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूँ, इज नासिर हुसैन। और मेरी किस्मत देखिए, एके नडियाड वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम किया
0: जी,
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है और ताउम्र याद रहने वाली बात।
1: और ये आखिरी गीत, इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी। कुलदीप सिंह जी ने ऑफकोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर की जो शुरुआत हुई है, काफी जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
0: उनकी शुरुआती दौर में
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस यस,
0: आप हमारे लिए लकी हैं।
1: तो ये हमने सोचा ही नहीं
0: जी,
1: था
0: जी,
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच गया।
0: बिल्कुल, और पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके साथ गाना आपको मिला।
1: बिल्कुल, और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
0: वो वही थी,
1: ये उन लोगों की ग्रेटनेस थी,
0: पुष्पा जी की आवाज हो सकती थी।
1: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
0: कीजिएगा जरूर, है
1: तब मैं आपको बताऊं,
0: मेरा ही सवाल है
1: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था स्टेज पे, गाता है बच्चा, तो वो गाना बज

0: और सब वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए।
0: बस वो गाना
1: जी,
0: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले पता है ये मेरी दीदी ने तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे
1: जी,
0: बैंक में, सिर्फ आइएगा तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया।
1: जी,
0: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में शायद, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की दुनिया में हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं तो ये गाना नंबर वन पर होता है। मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से, और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को हर घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, हाँ, वो पहचान, वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चले तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी बाप रे,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: चलिए ये गीत हम सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में। बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

देश के सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। वक्त की आंधियों में जलती रही है मेरे दिल में तेरी मोहब्बत की कली खिलती रही है। पास आओ या दूर ही रहो पूछो मेरे दिल से क्या चाहते मेरी हैं क्या मिलती रही हैं। कभी मेरी नजरों से तुम खुद को देखना मेरी नजर तेरी नजर से मिलती रही है।

मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा, ऐ मेरी जोहरा जबी।

0: जान में दी जान।
1: वो इश्क ही क्या जो परवान न चढ़े, वो घटा ही क्या जो आसमान न चढ़े, बीते सदियां बीते जमाना लेकिन वो हुस्न ही क्या जो किसी का अरमान न बने। तुम मुझे भूल भी जाओ मगर हम याद रखेंगे, छोड़ देंगे दुनिया अगर मेरा इश्क ही मेरी पहचान न बने।

तन्हाई की इस घड़ी में मेरा कोई नहीं है। याद आते हो तुम बेसबब आज मुझे इस तरह। भटकता फिर रहा हूँ इस अनजान शहर में, डेरा कोई नहीं है। पुकारता हूँ तेरे नाम को बस एक ही आसरा, तेरे सिवाय जमाने में मेरा कोई नहीं है।

0: आप सुन रहे हैं छाया की। यूं तो देखा नहीं है पहले कभी, पर लगता कोई गहरा नाता है। एक झलक में कोई कहां दिल को इतना भाता है। है कोई बात जरूर तेरी आंखों के चमकने, तेरी एक नजर से रोशन दिल मेरा हुआ जाता है। फेर के नजर यूं ना जाओ मुझसे दूर, इस बात से ही दिल मेरा घबराता बहुत है।
1: तेरा मुझे

मिले थे तुमसे न जाने कब पहली बार, यकीन यही है कि हो गया था तब भी तुमसे प्यार। दिन तेरे बिन जो बीते वो क्या खाक दिन थे, अब तुम जो मिले हो तो आया दिल को भी करार। कहता ना था मैं तुमसे कि हम पहले भी मिले हैं, न जाने कितने जन्म में, न जाने कब और कितनी बार।

आखिर मिल ही गए दिल हमारे, तेरी नजरों में ही चांद की रंगत को निहारें। क्या जिंदगानी थी और अब क्या होने लगी है, मेरी चाहत तेरी बाहों में अब खोने लगी है। मुझको तो पहले से मोहब्बत रही तुमसे, अब थोड़ी थोड़ी तुमको भी खोने लगी है।

छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन चला।

0: आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी आपण ऐकत आहात. संध्याकाळचे 6 वाजतात. आता दिल्लीहून प्रसारित होणाऱ्या हिंदी आणि इंग्रजीतल्या बातम्या आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए. श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया. श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं.
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था. नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और विमेन

0: एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बागचा राजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम विविधा।
1: भारतीय भाषाओं में हिंदी ने यह सौभाग्य हासिल किया कि उसने तीन ऐसे जन आंदोलनों का प्रवर्तन किया जिसने भारतीय मनीषा में आमूलचूल बदलावों को संभव किया। सिद्धोनाथों का अखिल भारतीय परिदृश्य, भक्ति आंदोलन की लोकव्याप्ति और भारतीय स्वाधीनता संग्राम, इन तीनों संग्रामों की न सिर्फ संपर्क भाषा अपितु प्राण भाषा भी हिंदी ही थी। पर इन विराट वैभवों को सहेजने और संभालने के लिए जिस जनजागरण की जरूरत थी उसकी कमी सदियों तक खली। सदियों के संताप भरे इस विराट शून्य को

भरकर हिंदी के परचम को दिग्दिगंत में लहराने का काम किया नागरी प्रचारिणी सभा ने। मौजूदा दौर की हिंदी भाषा और उसकी देवनागरी लिपि ने अपने इस स्वरूप को हासिल करने के लिए एक लंबा संघर्ष अभियान चलाया। इस अभियान में नागरी प्रचारिणी सभा की केंद्रीय भूमिका थी। बनारस के तीन स्वप्नद्रष्टा युवा समूह यानी बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने इसी मकसद के साथ 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। तत्कालीन दौर में सभा ने हिंदी प्रदेशों के 60,000 विशिष्ट नागरिकों के हस्ताक्षरों के साथ ब्रिटिश सरकार और अदालतों से देवनागरी लिपि में हिंदी प्रयोग की अनुमति मांगी। इसके समर्थन में एक विराट जन आंदोलन का स्वरूप भी संभव हुआ। कहना न होगा, इस आंदोलन में सभा के अनेक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। सभा ने ही निष्णात विद्वानों की सहायता से हिंदी का प्रथम वृहद समावेशी और प्रामाणिक शब्दकोश हिंदी शब्द सागर 12 खंडों में प्रकाशित किया। इसकी भूमिका लिखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कालांतर में यही संशोधित और परिवर्धित रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। इस किताब की उपस्थिति ने हिंदी साहित्य के कॉमन सेंस को संभव किया। आज भी हिंदी साहित्य के पिछले हजार वर्षों के इतिहास की सबसे प्रामाणिक आलोचना के तौर पर इसकी स्वीकृति है। सभा ने 12 खंडों में हिंदी विश्वकोश, 16 खंडों में हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के अलावा 500 से अधिक ग्रंथ छापे हैं। सभा की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती ने हिंदी वर्तनी और साहित्यिक समझ के निर्माण में युगांतकारी भूमिका का प्रणयन किया। 1905 में काशी में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान नागरी प्रचारिणी सभा के प्रांगण में ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऐलान किया था कि हिंदी ही भारत की भाषा हो सकती है और देवनागरी लिपि वैकल्पिक रूप से भारत की सभी भाषाओं के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए और यह कार्य काशी नागरी प्रचारिणी सभा को अपने हाथ में लेना होगा। सभा ने मिशन भाव से हिंदी के यशस्वी संसार को समृद्ध करने का बृहत्तर कार्य आरंभ किया। सभा से संबद्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने हिंदी भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए श्रमसाध्य और यशस्वी कार्य किया। सभा की जय यात्रा के पड़ावों में शामिल कहानीकारों में प्रेमचंद प्रमुख थे तो नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद अग्रणी, कवियों में हरियोद, मथिलेशरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा आदि ने अतुलनीय योगदान दिया। हम जान चुके हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारिणी सभा काशी के तीन संस्थापकों में अन्यतम थे। इस काम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। मिश्र जी पंजाबी थे जो काशी में आकर बस गए थे और हिंदी सेवा को अपना धर्म समझते थे। उनकी प्रेरणा से ही बाबू गदाधर सिंह ने अपने दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह आर्य भाषा पुस्तकालय काशी नागरी प्रचारिणी सभा को सौंप दिया था, जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं यानी पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें अपने समय के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, इसे 3 भागों में प्रकाशित किया। सभा ने हिंदी के साहित्यिक रूप के साथ उसके उस रूप का भी ध्यान रखा जिसमें ज्ञान विज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श के ग्रंथों का प्रकाशन

0: भाषा और देवनागरी लिपि में संभव हो। विश्वकोश के अनेक खंडों का प्रकाशन इस लिहाज से याद किया जा सकता है। इसी तरह भारत की गंगो जमुन तहजीब का संस्कार भी सभा ने अपने प्रयाण में शामिल किया। इस सिलसिले में अमीर खुसरो और मलिक मोहम्मद जायसी पर ग्रंथों के प्रकाशन ने हिंदी विधान को समृद्ध किया। सभा की यात्रा में स्वाधीनता के बाद शिथिलता आई। इतिहास के पन्नों पर 1943 की एक कहानी दर्ज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारी हस्तलिखित पांडुलिपियों को काल पात्र में डालकर चबूतरे में गढ़वा दिया था। यह कहानी दंत कथा सी लगती है, जादुई सी लगती है। नागरी प्रचारणी सभा में ही चबूतरे में गढ़वाई गई यह सामग्री। उसके 10 वर्ष बाद 1953 में सभा ने हीरक जयंती ग्रंथ का प्रकाशन किया। उस ग्रंथ में घटना के विवरण दर्ज हैं। संस्था का 50 वर्ष का कामकाज, उसकी वार्षिक रिपोर्ट्स, खोज का विवरण, सब कुछ एक कालपात्र धातु के एक बड़े बर्तन में रखकर उसका मुंह बंद करके उस जगह पर रखा गया जहां पर 1893 में महामना मदन मोहन मालवीय ने सभा का शिलान्यास किया था, वहीं पर गाड़ दिया गया समारोह पूर्वक। सभा के इतिहास में 1953 के बाद थोड़ी शिथिलता आई, लेकिन दशकों बाद सभा ने अंगड़ाई ली है और नए सूरज की तपिश को महसूस करने के दौर में पहुंच चुकी। नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने सभा पर विहंगम दृष्टि डाली और संकल्पों को यूं देखा।
1: नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा, साहित्य और उसके हजार वर्षों के आर पार फैले साहित्य इतिहास का सबसे पुराना जीवित संस्थान है। हमने इस संस्थान को बहुत करीब से देखा है, अपने बचपन से ही अपने पड़ोस से इसका आह्वान किया है। संस्था बहुत वर्षों तक बहुत अग्रणी भूमिका निभाती आई है हिंदी के निर्माण में, उसके उत्थान और विश्वव्यापी प्रचार में। इतनी महान, इतनी प्राचीन और इतनी व्यापक संस्था का नियमन आसान बात नहीं है। इस पर यह विडंबना भी साथ चलती आई है कि पिछले कुछ दशक इस संस्था की सक्रियता के इतिहास में अच्छे नहीं रहे हैं। यूं 1893 से 1950 तक इस सभा ने उपलब्धियों के जिन सोपानों का स्पर्श किया, 1950 के बाद वो उपलब्धियां धीरे धीरे क्षीण होती गईं। हमारा स्वप्न, हमारा संकल्प 1893 से 1950 तक के उसी स्वर्णिम दौर की पुनर्स्थापना का है। सभा के चप्पे चप्पे में इतनी महानता है कि उसके मेंटेनेंस का काम, किसी तरह की मुश्किल से उसको निजात दिलाने के काम में इतनी सेवा का पुण्य है कि मैं कैसे बताऊं, उसको शब्दों में विवक्षित कैसे करूं। सभा में होना अच्छा लगता है, सभा की सेवा करना बहुत पुनीत कार्य मालूम पड़ता है और रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझने वाले कर्मचारियों, हिंदी के शुभेच्छुओं, विद्यार्थियों, नौजवानों के साथ मिलके वहाँ अहर्निश मुब्तिला रहना, किसी न किसी चीज में योजनाएं बनाना, बातचीत करना, सब बहुत प्रीतिकर है। सभा ने हमारी भाषा को उसका इतिहास दिया, आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के तौर पर उसकी डिक्शनरी दी हिंदी शब्द सागर के तौर पे, वृहत इतिहास का कई खंडों में निर्माण कराया। सभा ने हिंदी को उसका व्याकरण दिया किशोरीदास वाजपेयी और कांता प्रसाद गुरु से लिखवा कर। सभा ने भाषा का विकास स्थिर किया बाबू श्याम सुंदर दास की किताब के रूप में। सभा ने हिंदी को पाठ संपादन सिखाया, तुलसी, कबीर, जायसी आदि महान भक्त कवियों की रचनावलियां संपादित करके। सभा ने पत्रिकाओं का संपादन भी सिखाया, नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती जैसी यशस्वी पत्रिकाएं अपने संरक्षण में, अपने तत्वावधान में संपादित प्रकाशित करवा के। सभा ने जयंतियां मनाई, सभा ने कोशोत्सव मनाया। कोशोत्सव देखिए कितना प्यारा शब्द है। वो आयोजन जब जमीन

0: पर उतरा होगा तो कितना स्वप्निल वातावरण रहा होगा। कोश का उत्सव हिंदी शब्द सागर के संपन्न हो जाने, पूरा हो जाने के अवसर पर सभा ने कोशोत्सव नाम से एक बहुत सुंदर आयोजन किया था, होली, दीपावली, दशहरे और ईद की तरह। तो सभा दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस की धमनियों में शामिल रक्त की तरह पेश आती रही है। सभा को उसकी वही भूमिका वापस मिलनी चाहिए। सभा जितनी हिंदी की है उतनी ही काशी की भी है। सभा को इन दोनों तथ्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है और निजी तौर पर मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि हम ऐसा काम करें कि हिंदी का माथा और ऊंचा हो, ऊंचा होता ही जाए हिमालय की तरह।
1: सभा प्रतिष्ठित पत्रिका नागरी का पुनर्प्रकाशन कर रही है। संपादक प्रोफेसर राजकुमार कहते हैं,
2: एक जमाने में जब नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी तो उसके पश्चात एक आलोचनात्मक और शोध परक पत्रिका भी नागरी प्रचारणी सभा निकालती थी जिसका नाम होता था नागरी प्रचारणी पत्रिका, और एक दौर में उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शोध परक आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होते और उसकी एक बड़ी प्रतिष्ठा थी समूचे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में। अब उसको नए सिरे से पुनः प्रकाशित करने की योजना है, तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि नागरी प्रचारणी पत्रिका का जो पहले का एक गौरवशाली इतिहास रहा है उसी के अनुरूप इसे फिर से निकाला जाए। ये यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ये त्रैमासिक पत्रिका होगी और इसमें जैसा कि पहले भी नागरी प्रचारणी पत्रिका में था केवल शोध परक या आलोचनात्मक लेख ही छपेंगे, जिनकी गुणवत्ता श्रेष्ठ होगी वैसे ही लेख इसमें प्रकाशित किए जाएंगे। त्रैमासिक पत्रिका होगी, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कोई लेख कितने पृष्ठ का या कितने शब्दों का होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे खुला रखा है। उद्देश्य ये है कि अच्छी सामग्री हिंदी के सुधीजनों के सम्मुख पहुंचे जिससे का ज्ञान संवर्धित हो। तो दोनों चीजें हैं कि एक तो इसका एक समकालीन संदर्भ है, शोध और आलोचना को प्रोत्साहित करना, ज्ञान के क्रिटिकल फैकल्टी को आगे बढ़ाना, नागरी प्रचारणी सभा की जो अपनी एक ऐतिहासिक विरासत और परंपरा रही है उसका निर्वाह करते हुए समकालीन संदर्भ में उसको प्रासंगिक बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें साहित्य और संस्कृत के से जुड़े हुए प्रश्नों पर तो हम लेख देंगे ही, साथ ही साथ समाज विज्ञान और देश दुनिया के जो और वैचारिक क्षेत्र हैं उसमें जो कुछ नया ज्ञान आ रहा है, नई पुस्तकें आ रही हैं, नया पेपर आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम हिंदी में हिंदी के पाठकों के सम्मुख एक गुणवत्तापूर्ण महत्वपूर्ण सामग्री पेश करने का प्रयास करेंगे।
1: सभा ने देवनागरी लिपि को प्रतिष्ठित किया। अभी भी बहुत भाषाएं लिपि विहीन है। भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अकादमिक समन्वयक डॉ. चंदन श्रीवास्तव ने सभा के साथ लिपि के मुद्दे पर काम करने का संकल्प लिया है।
3: नागरी प्रचारणी सभा का एक बहुत बड़ा इतिहास भी रहा है। इसके अतीत में बहुत सारे ऐसे कार्य रहे हैं जिनके कारण नागरी, जिसे देवनागरी भी हम कहते हैं, देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार पूरे देश में और देश के बाहर भी हुआ। भारतीय भाषा समिति भारतीय भाषाओं के ऊपर कार्य करती है और उनके उत्थान, उनके संवर्धन के लिए कई प्रकार के प्रावधान और नीतियों का भी निर्माण करती है। और जब हम भारतीय भाषाओं के संवर्धन की बात करते हैं तो उस संवर्धन में अनेक जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी लिपियों का भी प्रश्न उठता है, उनके लिपियों के भी संवर्धन का की बात उठती है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो देवनागरी लिपि है इसके प्रचार प्रसार की जो सीमा है, या ऐसा कहें कि इस पूरे प्रचार प्रसार को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, उसमें नागरी प्रचारणी सभा का अद्वितीय स्थान भी रहा है अतीत में और साथ साथ आगे भी, जो मुझे लगता है कि वो भारतीय भाषाओं में हिंदी के लिपि के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। अभी अनेक भाषाएं हैं या अनेक मातृभाषाएं हैं जिन मातृभाषाओं की लिपियां संभवतः अभी नहीं है, और उन भाषाओं के लिपियों को यदि नागरी लिपि के तौर पे अगर विकसित किया जाता है तो उन भाषाओं के प्रचार प्रसार में और उनके संवर्धन में भी काफी कुछ सहयोग मिलेगा और वो और बेहतर हो पाएंगी। जो नागरी लिपि है या फिर हिंदी भाषा है उसे हम केवल एक भाषा के तौर पे नहीं समझते हैं, बल्कि वो अनेक भारतीय भाषाओं को जोड़ने का भी कार्य करती है। इसलिए ये जो नागरी लिपि है या भारतीय भाषा है इन सभी के उत्थान और उन सबको आगे बढ़ाने में नागरी प्रचारणी सभा का काफी कुछ योगदान जो है वो बहुत पहले से रहा है और आगे भी जो

0: है वो योगदान लगातार बढ़ सकता है। भारतीय भाषा समिति की ओर से मुझे लगता है कि नागरी प्रचारणी सभा को बहुत सारे वैसे कार्यों के ऊपर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है जो उन्होंने बहुत पहले प्रारंभ किया था, और उनको फिर एक बार जो है पुनर्जीवित करके और देवनागरी को और ज्यादा आगे बढ़ाने का कार्य अनेक स्तरों पे किया जा सकता है। भारतीय भाषा समिति की ओर से कई सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसमें नागरी प्रचारणी सभा का भी योगदान हो सकता है।
1: प्रोफेसर अनुराग कुमार, काशी विद्यापीठ ने सभा के 72 कार्यों का सिंहावलोकन इस तरह किया।
2: इसकी स्थापना के प्रथम वर्ष में ही जो महत्वपूर्ण सदस्य इससे जुड़े उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन का भी नाम लिया जा सकता है, अंबिका दत्त व्यास का नाम लिया जा सकता है, चौधरी प्रेम घन का नाम लिया जा सकता है। नागरी प्रचारणी सभा का संयुक्त प्रयास रहा जिसके चलते सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में या लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को रोमन की जगह पर स्थान प्राप्त हुआ। यही नहीं, आप देखिए कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो भारत कला भवन है जिसकी विश्वव्यापी ख्याति है, उसका 9 वर्षों तक संचालन इसी नागरी प्रचारणी सभा ने किया। हीरक जयंती के अवसर पर नागरी प्रचारणी सभा ने जो अपना एक ब्यौरा प्रकाशित किया उसमें जो प्रांत के सभासदों को लेकर के जो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, अगर हम उसे पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि नागरी प्रचारणी सभा का जो आरंभिक 47 वर्षों का इतिहास है और जो काम है वो इस डेटा से बिल्कुल स्पष्ट होता है। वहां पर है कि प्रांत क्रम के से सभा के सदस्यों की संख्या क्या है और कहां कहां प्रांत के सभासद हैं। तो आसाम में 2, कश्मीर में 2, दिल्ली में 19, पंजाब में 28, बंगाल में 60, मुंबई में 47, बिहार में 43, मद्रास में 3, मध्य प्रदेश के बरार में 23 और मध्य भारत में 50, मैसूर में 3, राजपुताना में 84, संयुक्त प्रांत में यानी ये जो आज का अवध और उसको मिलाकर के 427, सिंध में 2, हैदराबाद में 4 और जो महत्वपूर्ण डाटा है विदेशों से 9 यानी कुल 806 सभासद 47 वर्षों के इतिहास में वहां पर हमें जो हिंदी की सेवा कर रहे थे, जो कि हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे थे, जो हिंदी में ज्ञान को लाने की कोशिश कर रहे थे। एक और चौंकाने वाला डेटा है कि इसमें महिला सभासदों की संख्या 32 है। पुस्तकों के पुनर्मुद्रण के लिए एक संस्था नहीं है बल्कि ये कहा जाए तो ये एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा से उपजी हुई हिंदी की चेतना को विकसित करने वाली, उसकी सांस्कृतिक विरासत को रचने वाली, उसमें ज्ञान हिंदी का जो ज्ञान है या पूरे जो पूरा जो भारतीय ज्ञान है चाहे या पूरा विश्व का जो ज्ञान है उसे हिंदी में प्रवेशित कराने वाली, उसका उसको विस्तार देने के क्रम में यह एक पूरा का पूरा आंदोलन धर्मी चेतना से युक्त एक ऐसा पद है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी को लेकर के खड़ा हुआ है। और हम ऐसे संस्था के प्रति उसका जो वर्तमान है और उसका जो भविष्य है उसके प्रति हमें देखना है, जानना है और समझना है।
1: काशी विद्यापीठ के ही डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने सभा की पांडुलिपियों की विहंगम यात्रा के अनुभवों का बयान किया।
3: उपनिवेशवाद का जो प्रभाव था उसके चलते ये दशा तो थी ही कि हिंदी उपेक्षित हो रही थी, हिंदी का लेखन उपेक्षित हो रहा था, और उसके पहले जो रीतिकाल का पूरा दौर था हम जानते हैं कि रचनाएं उन्हीं की बची रह गई जो कोर्ट या दरबार की परंपरा से जुड़े थे। बहुत सारा ग्रंथ था, लेखन था जो लोगों ने दरबार से बाहर रह करके लिखा था, हाथों से लिखा था, लेकिन वो कभी प्रकाशन के योग्य समझा नहीं गया ना उसको संसाधन मिले। और जाहिर सी बात है कि दरबार उसी की रचना को संरक्षित करता है, संवर्धित करता है जो दरबार की मनोदशा के अनुकूल लिखता है। तो हमारी जो पूरी पूर्ववर्ती परंपरा रही है रीतिकाल और अंग्रेजों के आने के बाद और उस मुगलों का जो पूरा दौर बीता है, उस दौर में एक बड़ा ही कह सकते हैं कि गुंजलक का दौर था कि लिखा तो बहुत कुछ जा रहा था लेकिन सामने बहुत कुछ नहीं आ रहा था। आचार्य शुक्ल को जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना हुआ तो उन लोगों ने कोशिश की कि साहित्य के इतिहास के लिए जो आधार ग्रंथ हैं उनको तलाशा जाए, और आधार ग्रंथों की खोज के क्रम में ही वे लोग राजाओं के दरबार में भी गए, तमाम मंदिरों मठों में गए और वहां से उन्होंने पांडुलिपियां उठा के ले आई, उनका पाठ निर्धारण किया, उनकी प्रामाणिकता पर बातचीत की और फिर उसको एक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके शुक्ल जी ने और उसकी दूसरी परियोजना के हिस्से के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास जी लोगों ने हिंदी साहित्य का एक इतिहास निर्मित किया। आंकड़े बताते हैं कि आज नागरी प्रचारणी सभा के पास करीब 20,000 पांडुलिपियां हैं और ये सिर्फ आंकड़ा भर नहीं।

0: हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो 20,000 पांडुलिपियां हैं इनको खोजना जितना सारस्वत कार्य था उससे कहीं अधिक सारस्वत कार्य था हाथों से इतना सारा ग्रंथ लिखा जाना। स्वयं नागरी पचाड़ी सभा है, उसने 3 खंडों में हस्तलिखित ग्रंथों की सूची समय समय पर प्रकाशित की। जो दूसरा खंड है उसमें 100 से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे सभा को, जिसमें 2 लोगों ने अपनी तरफ से उनको खोज करके सभा को दान किया था। एक थे बाबूराम बिथरिया और दूसरे थे दौलत राम जुवाल। बिथरिया साहब ने 99 हस्तलिखित ग्रंथ दिए थे। उन्हीं ग्रंथों में एक ग्रंथ था भारत कथा, वृंद का लिखा हुआ। इसकी पांडुलिपि अब बहुत दुर्लभ है, लेकिन भारत कथा को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रीति काल के दौर में एक ऐसा भी कवि था जिसने अपनी कविता में राजनीतिक बदलाव जो हो रहा था उस समय भारत में, मुगलों की सत्ता जा रही थी और उपनिवेशवाद प्रभावी हो रहा था, ब्रिटिश सत्ता प्रभावी हो रही थी, उस बदलते समय में उस संक्रमण काल की बहुत अच्छी नोटिस ली उन्होंने। कथा का आधार उन्होंने महाभारत का बनाया है, पांडव और कौरवों की कथा लगती है, लेकिन बहुत ही बड़ा वो पॉलिटिकल ग्रंथ आप कह सकते हैं वो था।
1: ज्ञान विज्ञान के इस नए दौर में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए तरह के शोधार्थियों विद्यार्थियों की संकल्पना के साथ संलग्न है, तब भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक दृष्टि के साथ सामाजिक राजनीतिक आर्थिक चिंताओं के साथ बाखबर होते हुए सभा बहुत सारे अकादमिक विमर्शों को फिर से रचने के लिए प्रस्तुत है। सभा अनेक अभियानों को पांडुलिपियों को संरक्षित करने का, उन्हें डिजिटलाइज करने का, उन सामग्रियों का बृहत्तर स्तर पर भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के देशों में भी जो हिंदी प्रेमी लोग हैं उन तक अपनी विपुल सामग्री को पहुंचाने के लिए और उन सामग्रियों से गुणवत्तापूर्ण भविष्य के निर्माण को रचने के लिए प्रस्तुत है। श्रोताओं, नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इतिहास के जिन अध्यायों को रचा वे सचमुच लाजवाब हैं। सभा नए दौर में पहुंच चुकी है, पुनर्नवा होकर नए सूरज को रचने के लिए फिर से प्रस्तुत है।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: शेतकरी बांधवांनो, आताच आपण कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी ऐकलात। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव। ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है, तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण

0: एफआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
1: इसी एफआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
2: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
2: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
3: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
4: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
5: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहाँ से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
3: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
3: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
2: चाइल्ड प्रोटेक्शन कंसर्न।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। IIT मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
4: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
5: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितम्बर

0: को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Toor wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said, a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said booth level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing special intensive revision to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था सफर। आइए सुनते हैं फिल्म महाराजा का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का फिल्म महाराजा के लिए।
1: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।

0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दोस्त। गीत आनंद बख्शी का था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में

0: गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
3: और अब आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

यह है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: राज्य केंद्र थे गायक संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलियां जुल्फ की घटा चुरा ना ले कहीं चोरी चोरी आ

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए, किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीत

संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44। फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

0: कुछ ऐसा।
1: 50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

सभी सुनने वालों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्यार सच्चा है गर तो महकेगा चंदन की तरह, वरना सारी रात तुम्हारी आंखों में गुजर जाएगी। वो लम्हात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ कह न सके हम, तकदीर के हाथों लुटते रहे, अश्क आंखों से ही बस बहते रहे। हम बुनते रहे ख्वाबों को अक्सर, और एक सिरे पे तन्हा रहे हम, वो दूजा सिरा ढूंढ न पाए।

लोगों ने बहुत समझाया हमको, ये इश्क नहीं आसा, तकदीर में जो होगा वो मिलेगा ही तुझे एक दिन, मगर हम जान की बाजी लगा बैठे, तमन्ना उसे पाने की, उसे अपना बनाने की, जो कसम खा बैठे।

हम करवटें बदलते रहे, वो नहीं थे पास मगर उन्हीं को याद करते रहे। चाहत भरे दो दिलों की दास्तां चुपके चुपके असर करने लगी, रह रहकर धड़कनों में बस एक ही पुकार।

वो रात आई, तकदीर इतनी बेरहम भी न थी, ये हमने उस रोज़ जाना। आसमां पे चांद अपने पूरे शबाब पर था, वो मेरे सामने चांदनी बनकर इस तरह आई। उस रात की तन्हाई में दिल मचल उठा और मोहब्बत भरे तराने ओठों पे सज गए।

जब सामने आ ही गए वो, तकदीर मेरी हंसी पड़ी। क्या खूब दीवाने होते हैं, नजरों में मोहब्बत के फूल खिल उठते हैं, सांसें महक उठती हैं, फिजाओं में रंग बिखर गए और आपस में शिकायतें भी तो यही करने लगे।

क्या कहें, राज दिल दीवानों से छुपाया न गया। मोहब्बत की आग ही कुछ ऐसी होती है कि तकदीर भी पल में बदल जाती है। प्यार के आगे वो मुस्कुरा के झुक जाती है। प्यार परवान चढ़ता है जब दो दिलों की बातें आंखों ही आंखों में होने लग जाती हैं।

मौसम कितना भी सुहाना हो या हो रातें सुहानी, बस वो तुम्हारी यादें, वो प्यार भरी बातें, वो तुम्हारी जुल्फों का लहराना मुझे मेरी नींदों से जुदा कर जाता है। क्या कहूँ मैं, किससे कहूँ अपने दिल का हाल, उस पर से ये रात का आलम भी कुछ कम कहर नहीं ढा रहा।

मुरझाए गीत में मोहब्बत भरे तराने आपके दिलों के बेहद करीब छोड़कर जाती हूँ। शायद ख्वाबों में मुलाकात हो जाए तो मंजरी वर्मा का नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: मैटिनी शो। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
3: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय

0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall at some places in Uttarakhand tomorrow. The IMD forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over Himachal Pradesh and West Uttar Pradesh tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोतेहो दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारं हिंदी आणि इंग्रजी बातमीपत्र आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून सहक्षेपित करण्यात आलं. श्रोतेहो यानंतर आपण ऐकणार आहोत जपान येथे आयोजित आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 दैनंदिन आढावा.
2: एशियन गेम्स 2026 आयची नगोया. कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज होते हैं और कुछ मुकाबले किसी खेल की पहचान बन जाते हैं. आईची नागोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा. कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था. और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया. तो आईची नागोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है. एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है. मैं हूं आनंद श्रीवास्तव. सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर. कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका. महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल. 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म. सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड. शूटिंग में आया एक और पदक. आशीष चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल. स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन. ज्योश्ना चिनप्पा और वेलावन सिंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत सिंह और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के. शुरुआत करते हैं कबड्डी से. आज मैच पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर. कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में.
3: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स. द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट. इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो. इट इज इंडियाज फोर्थ वुमेन्स कबड्डी गोल्ड सिंस द इवेंट एंटर्ड द एशियन Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
2: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना. शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया.
4: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई. महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया. तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया. इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है. 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली. हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई. फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रही और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गई.
2: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के

0: नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
1: इट वॉज अ 3-medal day फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद 2 silvers एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वाज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 seconds। लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन गेम्स मेडल टू हिज कलेक्शन। द 2-time डिफेंडिंग चैंपियन रजिस्टर्ड अ बेस्ट थ्रो ऑफ 20.64 meters टू टेक silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pahel missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished sixth, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paral Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing fourth in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished sixth. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing second in a semi-final in 20.81 seconds, while Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day one on the top of the standings with 4,338 points after 5 events, keeping himself firmly in contention as the remaining 5 disciplines take place on Sunday.
0: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
2: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनीष सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
0: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार 4थी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीर।